0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक छ बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ব্যাংকিং খেমত বিলি চি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং গোপ্য বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে দেপ্রে সালি জানকারী রি বিষয়া ঞ কল পরিমো সময় ঞ ঠকদিল খামো ব্যাঙ্গর বে কর্মচারী বীরা ঞ দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাং দি নীল পরিমো ঞ তানি সতর্ক তানা ঠদ্র ক্যা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্গর ক্যালে জনহিতারী জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদৈব ভরিলাই
2: तिम्रो जन्मदिन को अवसर में यो औठी उपहार तिमीलाई।
3: वाओ, कस्तो राम्रो डिजाइन को अनि कति चमकिलो, कहाँ बनाएको नि डार्लिंग?
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त, उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरी मा बनाएको नि।
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो।
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न, अझ हाम्रो विवाहमा त सुनको हार, मंगलसूत्र, सिक्री, टप, जन्तर, चन्द्रमा, छड्की तिलहरी, चुरी, बिन्दिया, चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि।
4: कम्प्युटर तौलमा छापावला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना, राशि अनुसारका पत्थर, चाँदीका सामानका साथै पुराना गरगहना साटफेट तथा सुनसादी खरिद बिक्रीका लागि
5: जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर लमजुङ एलजी डिलर सँगै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा। फोन नम्बर 0665242435275। विश्वास तपाईँको, सेवा हाम्रो।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेपाल ऋण खप्पै बिमगा छ क्याल्भोलुम प्रविधि से शोभा अल्मोनियम कोटेड सादा थिन रंगीन जस्ता पाता हुलास जुरा कलर छ्यान भन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमिला
1: तीन गुना लाना टुला
0: हुलास मुसम अर्कु तिल दमाइसे
2: Or Zangdia FM, Pontiana Birmingham.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मेरे को एक लड़की का इंग्लिश में मैसेज आया, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है उसने।
1: बस इतनी सी बात, एक काम कर, तू न्यूज ऐप डाउनलोड कर, सेटिंग में जा, मैजिक ट्रांसलेट ऑन कर। जैसे ही मैजिक ट्रांसलेट ऑन हो जाएगा तो जो मैसेज आया उस पर स्वाइप कर, मैसेज ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। और हाँ, तो तू ये रिप्लाई ना भी यूज कर सकता है, तू अपनी लैंग्वेज में टाइप कर और फिर उसे किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे।
0: अरे वाह भाई, मैं आज ही डाउनलोड कर लेता हूँ।
1: आप तो भी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Extreme energy drink.
1: Extreme energy drink. Time check. अहिले ठीक 3 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
3: मर्सिंग एफएम 95 मेगाहर्ज.
4: किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
5: राष्ट्र को शान किसान
4: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजी बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिग वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आछेवा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेर दिल परे।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेन्जी एफएम

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी